0: की सुविधा उपलब्ध होगी। आपके नजदीकी BDO ऑफिस, नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी कोलकाता, गीतांजलि। এখন শুনবেন বিজ্ঞান ধারাবাহিক ধুলো মুঠি সোনা মুঠি, আজ পর্ব ৯।

0: ആകാശവാണി കൊൽക്കത്ത ഗീതാഞ്ജലി.
1: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विशेष घोषणा.
2: केंद्र और राज्य सरकारों की 54 प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपके इलाके में जन कल्याण शिविर नाम की एक नई पहल शुरू की जा रही है.
1: 15 जून से 17 जून 2026 तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच इन शिविरों में सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा.
2: ब्लॉक स्तर से शुरू करके हर नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में आयोजित जन कल्याण शिविर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी. आपके नजदीकी BDO ऑफिस, नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं. धन्यवाद.
0: आकाशवाणी कोलकाता गीतांजलि. এখন শুনবেন প্রচলিত ভক্তিগীতি পরিবেশনায় রামকুমার চট্টোপাধ্যায়.

0: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विशेष घोषणा।
1: केंद्र और राज्य सरकारों की 54 प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपके इलाके में जन कल्याण शिविर नाम की एक नई पहल शुरू की जा रही है।
0: 15 जून से 17 जून 2026 तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच इन शिविरों में सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
1: ब्लॉक स्तर से शुरू करके हर नगर

0: पालिका और नगर निगम क्षेत्र में आयोजित जन कल्याण शिविर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। आपके नजदीकी BDO ऑफिस, नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी कोलकाता, गीतांजलि शुरू होच्छे। आधुनिक गानेर अनुरोधेर आसर। आजकेर प्रथम गानटी किशोर कुमारेर कण्ठे। नर्थ उलुबेड़िया हावड़ा थेके अनुरोध जानिएछेन भूमिका खटियाल, रिमिका खटियाल ओ बादल खटियाल। शिल्पी किशोर कुमार।

0: बंगाल सरकार की ओर से विशेष घोषणा।
1: केंद्र और राज्य सरकारों की 54 प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपके इलाके में जन कल्याण शिविर नाम की एक नई पहल शुरू की जा रही है।
0: 15 जून से 17 जून 2026 तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच इन शिविरों में सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
1: ब्लॉक स्तर से शुरू करके हर नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में आयोजित जन कल्याण शिविर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। आपके नजदीकी BDO ऑफिस, नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
2: आकाशवाणी कोलकाता, गीतांजलि। शुरू होच्छे जुबो बानीर अनुष्ठान, उपस्थापनाय श्वेता हाजरा।

0: শুনলেন সবিনয় নিবেদন। উপস্থাপনায় ছিলেন শর্মিষ্ঠা সরকার। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি।
1: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विशेष घोषणा।
2: केंद्र और राज्य सरकारों की 54 प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपके इलाके में जन कल्याण शिविर नाम की एक नई पहल शुरू की जा रही है।
1: 15 जून से 17 जून 2026 तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच इन शिविरों में सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
2: ब्लॉक स्तर से शुरू करके हर नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में आयोजित जन कल्याण शिविर मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। आपके नजदीकी BDO ऑफिस, नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी कोलकाता, गीतांजलि प्रचार तरंगे अनुष्ठान सुनछेन मीडियम ओवे 456.6 मीटर अर्थात 657 किलोहर्ट्ज से। এখন শুনবেন নানা রঙের গান। এই অনুষ্ঠানে প্রথমে নজরুল গীতি সুস্মিতা গোস্বামীর কণ্ঠে।

0: রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেন সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে। আকাশবাণী কলকাতা গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে।
1: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विशेष घोषणा।
2: केंद्र और राज्य सरकारों की 54 प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपके इलाके में जन कल्याण शिविर नाम की एक नई पहल शुरू की जा रही है।
1: 15 जून से 17 जून 2026 तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच इन शिविरों में सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।
2: ब्लॉक स्तर से शुरू करके हर नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में आयोजित जन कल्याण शिविर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। आपके नजदीकी BDO ऑफिस, नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी कोलकाता गीतांजलि। এখন শুনবেন নজরুল গীতির শিল্পী পরিমল ভট্টাচার্য।
3: আমি চিরতরে

0: K.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on Ghatam by Sri M. Chandrakant.
1: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान अकेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वही संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर है और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
0: श्री जे एस श्रीराम इज वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। He is known for his expressive and dynamic style of singing. He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
1: श्री जे श्रीराम अपने गायन का आरंभ वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
0: श्री जे श्रीराम begins his vocal recital with a composition of वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर in the राग ललिता set to आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जय श्रीराम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं, जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जय श्रीराम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पीरवली जयभास्कर and on घटम by श्री एम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे श्री राम in the broadcast of Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on violin by VSP Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Pirawali Jayabhaskar and on ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ

0: हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France, after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the Inter-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
4: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akash.